उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया,

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मुहर्रम हराम की यकुम और जून की 17 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने आज नए इस्लामी साल के आगाज पर कौम और पूरी इस्लामी दुनिया को दिली मुबारकबाद दी है। इक्तसादी राबता कमेटी ने अहम मंसूबों के लिए मुख्तलिफ तकनीकी जिमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी है। सिंध और बलोचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट आज पेश किए जाएंगे। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की रोकथाम के मामले पर बीजेपी हुकूमत की नाकामी के खिलाफ आज मुल्क गिर मुहिम शुरू कर रही है। रेडियो और टेलीविजन के मारूफ मेजबान तारिक अजीज की 6वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। और अब खबरों की तफसील। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए हिजरी साल 1448 के आगाज पर पाकिस्तानी कौम और पूरी इस्लामी दुनिया को दिली मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कौम पर जोर दिया कि वो बर्दाश्त को फरोग दें, कानून की हुक्मरानी को मजबूत बनाएं, कौमी इतिहाद को मुस्तहकम करें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मुस्बत किरदार अदा करें। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नए हिजरी साल के आगाज पर हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी में बर्दाश्त, मोहब्बत, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फरोग दें। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम हमें नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजीम कुर्बानियों और सानहे करबला की आफाकी तालीमात की भी याद दिलाता है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि इस्लामी साल का बाबरकत आगाज ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े के पुरम हल की इत्तला के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है क्योंकि अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें नतीजा खेज साबित हुई हैं। उन्होंने कौम पर जोर दिया कि वो अपनी इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी में दयानतदारी, मेहनत, बाहमी एहतराम, रवादारी और कौमी यकजहती को फरोग दें। इक्तसादी राबता कमेटी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की, अवामी खिदमात और सिक्योरिटी के अहम मंसूबों के लिए मुख्तलिफ तकनीकी जिमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी है। यह मंजूरी इस्लामाबाद में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत कमेटी के इजलास में दी गई। इजलास के दौरान कमेटी ने डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के लिए 5 अरब, नादरा के लिए 2 अरब 19 करोड़ 28 लाख रूपए की तकनीकी जिमनी ग्रांट और इस्लामाबाद के सेक्टर H16 में मॉडल जेल की तामीर, नेशनल पुलिस अस्पताल मंसूबा और फॉरन नेशनल सिक्योरिटी सेल डैशबोर्ड और इससे मुतल्लिका सहूलियात समेत 3 तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 12 करोड़ 42 लाख रुपए की मंजूरी।

0: दी। कमेटी ने इंसदाद मनशियात फोर्स की ऑपरेशनल जरूरियात पूरी करने की गर्ज से हेलीकॉप्टरों की मरम्मत के लिए 24 करोड़ 5 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। जरई शोबे के लिए ईसीसी ने एसएनजीपीएल से मुंसलिक यूरिया तैयार करने वाले कारखानों फातमा फर्टिलाइजर्स और एग्रीटेक के हवाले से 30 तारीख तक के लिए एक समरी की मंजूरी दी। वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने बहरीन कलाम रोड की तामीर और बहाली के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने ये ऐलान इस्लामाबाद में उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर इंजीनियर अमीर मकाम से मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर इंजीनियर अमीर मकाम ने बहरीन कलाम रोड के लिए खसूसी फंड्स की मंजूरी पर वजीर मुवासलात का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क की तामीर और बहाली से इलाके में सियाहत को फरोग मिलेगा, मकामी मीशत मुस्तहकम होगी और आवाम को बेहतर फ्री सहूलियात मुयसर आएंगी। कौमी असम्बली और सैनेट के अजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू होंगे। कौमी असम्बली का अजलास दिन 11 बजे जबकि सैनेट का अजलास दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। सिंध और बलोचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट में आज मुतल्लिका सूबाई असम्बलियों में पेश किए जाएंगे। सिंध असम्बली में वजीर आला सैयद मुराद अली शाह, जिनके पास वजीर खजाना का कलमदान भी है, बजट पेश करेंगे जबकि बलोचिस्तान में सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशिरवानी बजट पेश करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। जमीन के बंजरपन और खुश्क साली की रोकथाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है चरागाहों की देखभाल और बहाली। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल चरागाही इलाकों को खुसूसी अहमियत दी जा रही है क्योंकि ये मुआशी माहौलियाती और सकाफती एतबार से नहायत अहमियत के हामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुतलका फरीकों पर जोर दिया है कि वो चरागाहों और कुदरती माहौलियाती निज़ाम के तहफ्फुज़ और बहाली के लिए मिलकर काम करें। जमीन के बंजरपन और खुश्कसाली की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वसी चरागाही इलाके गल्लाबानी पर मबनी माश और देही मीशत की तरक्की के लिए नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल होने की हैसियत से पाकिस्तान इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि नाकाबिले काश्त अराजी का पायदार इंतजाम और बहाली माहौलियाती इस्तेहकाम मौशी खुशहाली और समाजी बहबूद के लिए नागुजीर है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रख़ेज़ स्कीम के तहत किसानों को नर्म और आसान शराइत पर कर्जे फ़राहम किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी ज़रई ज़मीन की पैदावार बढ़ा सकें। भारत में हिस्बे इख्तलाफ की कांग्रेस पार्टी बीजेपी हुकूमत की जानिब से नौजवानों के मसाइल खुसूसन बेरोजगारी के हल में नाकामी के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम का आगाज कर रही है। ये मुहिम राजस्थान के शहर कोटा से शुरू होगी और उसके बाद दिल्ली, पटना, इलाहाबाद और दीगर शहरों में मुख्तलिफ तकरीबात और कन्वेंशन का सिलसिला जारी रहेगा। मुहिम के दौरान बेरोजगारी, भर्ती के मुनसिफाना निज़ाम की कमी, इम्तहानी अखराजात में इजाफा और इम्तहानी पर्चाजात आउट होने के मसाइल पर आवाज उठाई जाएगी। रेडियो और टेलीविजन के मारूफ मेजबान तारिक अजीज की आज छठी बरसी मनाई जा रही है। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर में पैदा हुए। उन्होंने 1960 के अशरे में मेजबान के तौर पर रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया और पाकिस्तान के पहले मर्द अनाउंसर और मुमताज टीवी मेजबान के तौर पर अपनी पहचान बनाई। तारिक अजीज ने पीटीवी के मशहूर क्विज शो नीलाम घर से शोहरत हासिल की जो पहली बार 1974 में नशर हुआ और बाद में कई अशरों तक तारिक अजीज शो और बज़्मे तारिक अजीज के नाम से जारी रहा। उन्होंने मुतादित फिल्मों में भी अदाकारी की जिनमें चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, हार गया इंसान और इंसानियत शामिल है। 1994 में उन्हें सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। वो 2020 में आज के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 84 बरस थी। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले लीड्स में खेले जाने वाले दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से जबकि भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। फुटबॉल आलमी कप में अर्जेंटाइन और अलजजायर के दरमियान कैंसस में मैच जारी है। आज खेले जाने वाले दीगर दो मैचों में सैन फ्रांसिस्को में ऑस्ट्रिया का मुकाबला उर्दन से और ह्यूस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला कांगो से होगा। इससे पहले फ्रांस ने न्यूजर्सी में सेनेगाल को 1-3 जबकि नॉर्वे ने बूस्टन को इराक के 1-4 हरा दिया। कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के कौमी इदारे ने नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने शुमाली इलाका जात शदीद बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में पीर तक लैंडस्लाइडिंग का इंतबाह जारी किया है। शदीद बारिशों से मिट्टी के तौदे गिरने के बायस शाहराह कोराक्रम समेत मुतादिद बड़ी शाहराहें मुतासिर हो सकती हैं। इंतबाह में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में हफ्ते तक सैलाबी सूरतेहाल का खदशा भी जाहिर किया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पंजाब बालाई सिंध और शुमार मशरकी बलोचिस्तान में बास मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बास बड़े शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर और पिशावर 28 कराची 30 कोयटा 21 गिलगित 20 मरी 14 और मुजफ्फराबाद में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू ले शुपिया बारामूला और श्रीनगर में मतलब जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है जबकि पुलवामा और अनंतनाग में मतलब जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जे हरारत श्रीनगर अनंतनाग और बारामूला में 15 डिग्री सेंटीग्रेड जम्मू 27 लेह 3 जबकि पुलवामा और शुपिया में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। सदर और वज़ीर आज़म ने आज नए इस्लामी साल के आगाज पर कौम और पूरी इस्लामी दुनिया को दिली मुबारकबाद दी है। इक्तसादी राबता कमेटी ने अहम मंसूबों के लिए मुख्तलिफ तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी है। सिंध और बलोचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट आज पेश किए जाएंगे। भारत में हिस्से इख्तलाफ की कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की रोकथाम के मामले पर बीजेपी हुकूमत की नाकामी के खिलाफ आज मुल्क गिर मुहिम शुरू कर रही है। रेडियो टेलीविजन के मारूफ मेजबान तारिक अजीज की छठी बरसी आज मनाई जा रही है। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk।
1: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर कोयटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन। हमसे है

0: be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM.
3: Hi, this is FM 101.
4: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
5: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
6: This is FM 101.
7: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: This is FM 101.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101.
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है, ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101.
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है, जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101۔

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने तमाम मुतल्लिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के कुदरती माहौलियाती निज़ाम के तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करें। सिंध और बलोचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने तमाम मुतल्लिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के कुदरती माहौलियाती निज़ाम के तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करें।

0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: कि गुंजाइश बकायदा तौर पे बहुत एफर्ट करके पैदा की गई है और होम ग्रोन प्लान के तहत वो पैदा की गई है। जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेन आपका जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है, उसमें दो तीन प्रॉब्लम थे। डिजिटलाइजेशन रुकी हुई थी, अफसरान करप्ट थे और सिफारिश पे पोस्ट होते थे, और टैक्स कलेक्शन का कोई मजबूत निजाम मौजूद नहीं था। तो ये जो भी रिलीफ दिया है, इसकी गुंजाइश कैसे पैदा हुई? शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि मैं टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकता। तो उन्होंने दो तीन काम किए। नंबर वन, उन्होंने कहा कि ये सियासी सिफारिश से पाक होगा पूरा FBR, कोई कस्टम्स का अफसर, कोई इनकम टैक्स का अफसर सिफारिश पे नहीं लगेगा। और सो मच सो कि मैं अपना जाती आपको बताऊं, मेरे हल्के से एक बंदा आया सिफारिश लेके, मैंने उसे कहा कि यार FBR में सिफारिश नहीं चलती, और आप सिफारिश करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टें बनी हैं, हर किसी की असेसमेंट हुई है और मेरिट पे लोग लगाए गए हैं। उसको यकीन ना आया। वो जब सस्पेंशन ऑर्डर आए तब उसको यकीन आया कि वो वाकई FBR में अब सिफारिश नहीं चलती। और पोर्ट से लेके आपके इनकम टैक्स के ऑफिसेस तक अब एक मेरिट का निजाम है, यानी पोर्ट्स के ऊपर फेसलेस अप्रेजमेंट है। जिस भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का माल क्लियर होने के लिए पड़ा है, उसका कस्टम के किसी अफसर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक सिस्टम है, उसमें GD नंबर एंटर होता है, वहीं से सारी चीजें क्लियर होती हैं, और जो हफ्तों में होती थी अब दिनों के अंदर होती हैं। अब फेसलेस सिस्टम है, कंप्यूटर के ऊपर है, ऑनलाइन है, तो उस पर गुंजाइश नहीं है किसी से कोई डिमांड करने की या डिले करने की। इसी तरह ये बड़ी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो विंडफॉल प्रॉफिट कमा रही थी और टैक्स नहीं दे रही थी। शुगर की इंडस्ट्री, बेवरेजेस, सीमेंट, टोबैको। शुगर पे बड़ी बात की जाती है, मगर प्राइम मिनिस्टर ने शुगर से आगाह कि टैक्स कलेक्शन शुगर इंडस्ट्री से सबसे पहले की जाए। शुगर मिलों के अंदर कैमराज लगे, बकायदा IT का सिस्टम इंस्टॉल हुआ कि प्रोडक्शन कितनी है और सेल कितनी है, और अगर एक बोरी शुगर की मिल से निकलती है तो बार कोड लगा हुआ है उसके ऊपर, QR कोड लगा हुआ है कि वो बोरी ट्रेसेबल है, कि वो मिल से निकल के कहां गई, कहां बिकी। वो स्मगल नहीं हो सकती, वो खुर्द बुर्द नहीं हो सकती। तो जो प्रोडक्शन कम बताते थे मिलों वाले, प्रोडक्शन का पूरा स्टॉक टेक किया गया IT के जरिए। 60 अरब रुपया सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया गया है शुगर मिलों से, 60 अरब रुपया। इसी तरह टोबैको इंडस्ट्री में 200 अरब की लीकेज है, टोबैको ट्रेड को रोका गया। इसी तरह बेवरेजेस का हो रहा है, सीमेंट का हो रहा है, कि इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो टैक्स नहीं देती और उनका टैक्स तनख्वाहदार तबका उठाता है, तो कम से कम उतना टैक्स दें जितना उनका बनता है। और यह IT के सिस्टम के जरिए इसको अचीव किया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है, टैक्स कलेक्शन और टैक्स के डिस्प्यूट और लिटिगेशन के हवाले से नए ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, उनके नए चेयरमैन आ चुके हैं, उससे भी कई 100 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो मुमकिन हुई। स्टे ऑर्डर वेकेट करवाए गए और AG ऑफिस और लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया कि 100% रिकवरी करा के दें। तो ये तकरीबन पिछले एक साल में 800 अरब रुपए की इन्फोर्समेंट से पैसा आया है। ये तो IMF से हटके है, ये तो एक जाती काविश है शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि वो समझते थे कि जब तक टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं होगी और जिनका टैक्स बनता है वो नहीं देंगे और FBR के रिफॉर्म्स नहीं होंगे, IT बेस्ड सिस्टम नहीं आएंगे। बिल गेट्स की फाउंडेशन जो है वो FBR की डिजिटलाइजेशन में इन्वॉल्व रही, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए वो IT का सिस्टम इस वक्त चला रहे हैं, और जो पराल इनका एक इदारा है जो डिजिटलाइजेशन का है, उसके बोर्ड पे तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो शायद अगर वज़ीर-ए-आज़म ना इस पे काविश करते तो वो ना आते। तो FBR एक टोटली डिफरेंट FBR है, इन्फोर्समेंट के हवाले से, IT सिस्टम्स के हवाले से, शफाफियत के हवाले से, मेरिट के हवाले से, जिसने ये गुंजाइश पैदा की है। ये PTA की गवर्नमेंट भी कर सकती थी, नहीं किया। तो ये जो गुंजाइश पैदा की गई है, तब तनख्वाहदार तबका, एक तो बड़ी क्लैरिटी है, जिसकी तनख्वाह 50,000 या उससे कम है वो कोई टैक्स नहीं दे रहा। लेट मी बी वेरी क्लियर, 50,000 रुपए महाना या उससे कम, जीरो टैक्स। 50,000 से 1,00,000 महाना जिसकी तनख्वाह है, 1% टैक्स। उसके ऊपर वाले स्लैब्स पे आपने देख लिया कि तमाम लोगों की डिमांड थी कि टैक्स को कम किया जाए, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम किया गया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जो 5 मरले का 10 मरले का घर बेचना या खरीदना चाहते हैं, या प्लॉट 5 मरले का 10 मरले का बेचना या खरीदना चाहते हैं, उनका टैक्स बहुत कम कर दिया गया है। दूसरा, जो अपना घर प्रोग्राम है उसके लिए 90 अरब रुपया डिस्पर्स हो गया है, 11 अरब रुपया। जब हाउसिंग सेक्टर को पैसा मिलता है तो क्या होता है? सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को नहीं मिल रहा होता, हाउसिंग के अंदर सीमेंट, बजरी, सरिया, फिटिंग्स, 12 इंडस्ट्रीज हैं जो हाउसिंग को फीड करती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज का पहिया चलता है उस चीज से, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा एक जो बहुत अहम चीज की गई है एक्सपोर्टर्स के लिए, एक एडवांस टैक्स था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और एक सुपर टैक्स था, वजीर आजम ने कहा तमाम एक्सपोर्टर्स का सुपर टैक्स आज से खत्म, एडवांस टैक्स भी खत्म। इससे क्या होगा? जब एक्सपोर्टर ज्यादा मुनाफा कमाएगा, उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा, वो डाइवर्सिफाई करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, नौकरियां मिलेंगी, इकॉनमी ग्रो करेगी, जरे मुबादला के जखायर बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, और मेड इन पाकिस्तान अशिया बाहर कंपेटिटिव हो जाएंगी, तो ये ओवरऑल इकॉनमी को बूस्ट हाउसिंग सेक्टर भी देगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से भी होगा। और ये एक्सपोर्टर्स के लिए मजीद रियायतें भी रखी गई हैं कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम थी उस पर इंटरेस्ट रेट 4% रखा गया है, सिर्फ 4%, और मार्केट में आपको बताया 11% है, तो ये 4% बहुत बड़ी रियायत है एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के लिए। तनख्वाहदार तबका, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, सबको फायदा दिया गया है इस बजट के अंदर, इसीलिए मुखालफीन भी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश यह है, अभी बिलाल साहब तफसील से रोशनी डालेंगे, फिर हम सवाल भी लेंगे, कि देखें अगर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ तनख्वाहदार तबके वाला भी, एक्सपोर्टर्स वाला भी, तो वो बिजनेसमैन, उसको पता है इस चीज का, वरना तो वो हमारा नाकिद है। ये पॉजिटिव बजट है, रिलीफ का बजट है, और ये अब तरक्की और खुशहाली का आगाज हो चुका। याद करें उस वक्त को कि जब डिफॉल्ट के दहाने पे थे, और ये 2 साल में ओवरनाइट नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात अनथक मेहनत की अपनी पूरी टीम के साथ, औरंगजेब साहब ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम, SIFC, उन्होंने भरपूर काविश की है इस चीज के लिए। तो ये फाइनेंस की टीम, प्राइम मिनिस्टर खुद, उनकी पूरी टीम, फील्ड मार्शल की टीम, ये एक टीम वर्क के नतीजे में, ये रीफ ओरिएंटेड बजट के नतीजे में हम अब खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि पूरे साल में लोग इस रिलीफ से फायदा उठाएंगे। ओवर टू बिलाल साहब एंड देन वी टेक क्वेश्चंस।
1: अता साहब ने तफसील में बता दी कि किस तरह ये एक अवामी बजट है, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक तनख्वाहदार।
2: दिस इज FM 101 FM।
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: لسنرز، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: खुद अदा करते थे, तो उनको मदद मिलेगी, उनका ये टैक्स का बर्डन कम होगा। एक्सपोर्ट के हवाले से जो सुपर टैक्स और एडवांस टैक्स खत्म किया है उससे बहुत मदद मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बहुत सारी सहूलियात पैदा की गई हैं। अब तवक्को ये है, और जो इन्फोर्समेंट के इदारे हैं स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट मिलके, कि जो 7% इंक्रीज किया गया है तनख्वाहों में पब्लिक सेक्टर के अंदर, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में 10% मिनिमम वेज का इंक्रीज है, तो उसकी भी जो रेगुलेशन है, इन्फोर्समेंट है, लेबर कंसर्न लेबर डिपार्टमेंट्स को वो इंश्योर करनी है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करेगी कि इसको इंश्योर किया जाए 100% के प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो इस पे अमल दरामद करे, और हम जहां उनको मदद रिक्वायर्ड होगी वी विल गो विद देम। जी अब्दुल हसीब अबड़ो साहब,
1: मेरे आपके आपसे जो है बुनियादी तौर पर तीन ही सवाल आते हैं कि बजट के अंदर डिजिटल
2: नामे हुसैन हश्र तक
0: आईटी के ऊपर टैक्स कंसेशंस जो हैं उनको कंटिन्यू किया गया है। ये एक सेक्टर है स्पेशली फ्रीलांसर्स के हवाले से कि कोई इजाफी बोझ नहीं है, इजाफी टैक्स नहीं है, और आईटी सर्विसेज को एक अपनी प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ने रखा है। तो जितना भी कंटेंट आप क्रिएट करेंगे पोस्ट करेंगे उस पर कोई इजाफी ड्यूटी लेवी टैक्स जो है वो किसी किस्म का हुकूमत ने लागू नहीं किया। एंड स्पेशली आईटी कंपनीज के हवाले से भी हमने उनको कंसेशंस दिए हैं ताकि वो अपने मामलात को आगे चला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तलहा सलीम साहब ने बड़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ जी।
3: सवाल ये है कि तनख्वाहदार तबका जो है उस पर 9% सरचार्ज खत्म करने के बाद जो रेवेन्यू है उसकी कमी को किस तरह पूरा किया जाएगा? जी
0: ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, जैसे मैंने आपको बताया कि FBR के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसके तहत जो ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग केसेस थे उसका नया शफाफ सिस्टम लाया गया है, डिजिटलाइजेशन की गई है, फेसलेस अप्रेजमेंट का सिस्टम लाया गया है, फेसलेस टैक्स कलेक्शन का सिस्टम लाया गया है। चार बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें बेवरेजेस, सीमेंट, शुगर और टोबैको है, उस पर IT सिस्टम लगा के उनसे पिछले साल तकरीबन सिर्फ 60 अरब रुपया शुगर इंडस्ट्री ने दिया है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स को वज़ीर आज़म ने बेहतर किया है, तो 800 अरब रुपया हमने थ्रू इन्फोर्समेंट कलेक्ट किया है। चलें जी हम आगे अब रमीज राजपूत साहब की तरफ आते हैं जी।
4: मेरा एक छोटा सा सवाल है ज्वेलर्स और गोल्डस्मिथ ब्रादरी के हवाले से कि टैक्स के अंदर उनके लिए क्या इकदाम खसूसी तौर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा तबका छोटा दुकानदार जो है वो टैक्स के निजाम से बड़ा खौफजदा भी है और इससे भागता भी है और इस सिस्टम में आता नहीं है।
0: इस मुल्क के अंदर तकरीबन 36 लाख रिटेलर है जो टैक्स नेट से बाहर था, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। उनको इनकरेज किया गया है कि फिक्स टैक्स सिस्टम के तहत, और ये ताजिर तंजीमों से मीटिंग्स के बाद किया गया है कि तमाम ताजिर तंजीमों की तरफ से डिमांड आई कि जी हम आपसे कोऑपरेट करते हैं, FBR की जो एक हरासमेंट है या FBR के अफसर जो आते हैं, जो रेड्स होते हैं, जो वो इक्विपमेंट ले जाते हैं, इसको बंद करवाया जाए। उनसे बातचीत हुई, अब उन्होंने जो अपनी डिमांड दी है उसके मुताबिक अब फिक्स टैक्स सिस्टम के तहत उनको स्कीम के अंदर लाया गया है। वो टैक्स नेट का हिस्सा होंगे, वो FBR का सर्टिफिकेट लगाएंगे और कोई उनको चेक नहीं करेगा, और जो मिनिमम वो पे करेंगे वो 25,000 रुपया मिनिमम साल का पे करेंगे, जिनका टर्नओवर सबसे कम है, अरबों रुपया इससे आएगा, वो टैक्स नेट का हिस्सा भी बनेंगे और FBR की तरफ से उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और ताजिर तंजीमें पूरे पाकिस्तान की ऑन बोर्ड है। जो आपने बात की विद रिगार्ड टू ज्वेलर्स, उनकी एक हमारे पास डिमांड्स का एक पूरा आया है चार्ट, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और क्योंकि वो देखिए ये बहुत एक है और ये इम्पोर्ट के जरिए ज्यादातर इनके पास गोल्ड आता है, तो उस हवाले से हमारी उनसे बातचीत चल रही है और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसको कंसिडर किया जा रहा है। जो उनकी डिमांड्स का चार्ट हमारे पास आया है जो मुख्तलिफ सराफा एसोसिएशन ने भेजा है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस पर कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो तरतीब दी जाएगी। राना अब्दुल खालिक साहब,
5: मेरा ये क्वेश्चन था कि मौजूदा बजट जो आपने अभी दिया है उसमें ज़रई पैदावार बढ़ाना और गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने कौन से इकदाम लिए हैं जिससे किसान को फ़ायदा हो सके? हमेशा जो एग्रीकल्चर सेक्टर को मारा जाता है, तो इस बजट में खसूसन खसूसी क्या उनके लिए इकदाम लिए गए?
0: बहुत शुक्रिया। इसमें एक तो जितनी भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट या एग्रीकल्चर इम्पोर्ट है उस पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। दूसरा ये कि यूथ बिजनेस लोन के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और यंग ग्रेजुएट्स को प्रमोट करने के लिए 150 अरब या 125 अरब रुपया तकरीबन रखा गया है यूथ एग्रीकल्चरल लोन्स की मद में कि लोग अपनी ग्रोथ कर सकें। ज़राई ग्रेजुएट्स को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1000 को इस साल चाइना भिजवाया तालीम के लिए और एग्रीकल्चरल इनोवेशन के लिए, वो स्कीम कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा जरखेजी के नाम से एक स्कीम आई है जिसके तहत जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है उस पर इंटरेस्ट रेट को बहुत लोअर किया जाएगा और आसान एक साथ पे उनको ये दिया जाएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट को रिफॉर्म किया जा रहा है और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मेरिट पे लोग लाए जा रहे हैं ताकि ये मामला जो हैं बहुत खुश उसलूबी से आगे बढ़ सके। मैं जी सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत टाइम निकाला और ये बजट के ऊपर ब्रीफिंग सारी ली। हमने कोशिश की कि मैक्सिमम हम सवाल एड्रेस कर सके, जो हमें ऑनलाइन भी आए उनका भी जवाब दिया। तो हम मजीद ऐसे सेशंस होल्ड करते रहेंगे ताकि इस नैरेटिव को पॉजिटिवली आगे लेके चलें, इस पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की खातिर और आपके फ्यूचर की खातिर। और ये एक टीम वर्क है जिसमें नवाज शरीफ साहब का विजन है, उन्होंने बड़ी मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से ये 2 साल में मैक्सिमम रिलीफ पैदा करने की कोशिश की और वो अपने वादे को वफा किया और फिर माशा सईद आसिम अली उनकी पूरी टीम भरपूर उन्होंने जो है इस पे एफर्ट की है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे जी। बहुत शुक्रिया।
6: विफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारर और वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी विफाकी बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के फाल
2: नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, बर्बाद था यजीद वो बर्बाद रहेगा, हुसैन तेरे खून के हर एक कतरे से गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: 101 FM।
1: मौजूद सामेईन, आप एफ एम 101 इस्लामाबाद से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरात सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान बिनिश अब्बासी।

0: कर दो
1: FM.
2: मौजूद सामीन आप सुन रहे हैं एफ एम 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: Coming up next, 101 News Headlines.
2: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम मिस्र के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली हाली मुफाहमत पर तबादले ख्याल किया है। वजीर इत्तलात नशियात ने कहा है कि हुकूमत ने रिलीफ, तरक्की और खुशहाली पर मबनी बजट पेश किया है। कौमी असेंबली को आज बताया गया कि हुकूमत ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है ताकि ज़रई पैदावार में इजाफा और किसानों की आमदनी और मुनाफा बढ़ाया जा सके। और सिंध और बलूचिस्तान के आइंदे वाले साल के बजट आज पेश किए जाएंगे।
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: Coming up next, 101 news headlines. News headlines.
2: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम और मिस्र के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली हालिया मुफाहम पर तबादला ख्याल किया है। वजीर इत्तलात नशियात ने कहा है कि हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए रिलीफ, तरक्की और खुशहाली पर मबनी बजट पेश किया है। वजीर मुमलकत बराए खजाना ने कहा है कि वफाकी बजट ताजिर बरादरी, तनख्वाहदार तबके और टैक्स दहिंदगान को सहूलत फराहम करेगा। कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत ज़राअत के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रही है ताकि ज़राई पैदावार और किसानों के मुनाफे में इजाफा किया जा सके। सिंध और बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट आज पेश किए जाएंगे। और अफगान तालिबान के जेर कंट्रोल अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा गढ़ बन गया है।

0: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।
1: मौजूद सामईन, आप FM 101 इस्लामाबाद से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: मक्का के जमाने का कतबा जो मस्जिद के आगाज तामीर का शाहिद है आज भी मस्जिद मौजूद है। नदीदा चश्म फलक मस्जिद बदी खूबी के आम दंद मलायक बराए दीदन फैज़ बजुस्त मस खिरद व अक्ल साल तामीरश बदीदा कर्द इशारत हस्त मादन फैज़ हस्त मादन फैज़ से 254 बराबर होते हैं। दूसरा कदर तारीख मस्जिद के साल इतमाम को जाहिर करता है। चूँ साहिब किरान शाह जहाँ याफ तरतीब मस्जिद आला हातिफ गुफ्त साल इतमामश गश्त जेबा चु मस्जिद अक्सा 257 से निकलता है। आखिरी कदबा उस जमाने के खत्तात अब्दुल गफूर के कलम का रहीनी मिन्नत है। यूँ तो शाहजहाँ के दरबार में बहुत से मशहूर खत्तात मौजूद थे लेकिन उनमें से जिनका ताल्लुक अबुल बका के दौर से है उनमें सैयद अब्दुल्ला हुसैनी नाजुक रकम शेख मोहम्मद फाजिल और अब्दुल गफूर इसलिए काबिल ज़िक्र हैं कि उनके कलमों की गुलकारी ठट्टे की जाम मस्जिद के कई कदबात पर नजर आती है। मस्जिद मजकूर के दरमियानी दरवाजे के बालाई हिस्से में ज़ैल का एक कतबा अब तक मौजूद है जिसका एक शेर यह है साले तामीरश आ दबीर खिरद फर्श मदबू और दिलकशा परदाख्त इससे 268 हिजरी बरामद होता है। जैसा कि तारीखी कदबात से वाजह है कि मुग़ल तर्ज तामीर का यह शाहकार जाम मस्जिद 4 साल में तामीर हुई। महकमा आसार कदीमा बम्बई की रिपोर्ट नंबर 8 मौरखा 1879 के मुताबिक इस पर 9 लाख रुपये खर्च हुए। इस मस्जिद का तूल 305 और अर्ज 170 मुरबा फुट है। इसकी कुर्सी काफ़ी बुलंद है। बैरूनी हिस्सा सहन बिल्कुल सादा है लेकिन अंदरूनी दारा नमाज की दीवारों में नहायत उमदा मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा इसकी रंगीन टाइलों की गुलकारी ने इसको एक जिंदा जावेद शीश महल बना दिया है। इसके 92 गुंबद हैं जिनके मीनाकार टाइलों से शाहजहाँ की खुशौकी का एक हसीन मरक्का सामने आता है। दरमियानी 3 गुंबद मरकजी हैसियत के हामिल हैं। इन 3 में से भी वस्ती गुंबद के डिज़ाइन और उसके गुलबूटों को देखकर तो ये महसूस होता है गोया वो एक दुर्रे शावार है जो मस्जिद की पेशानी पर चमक रहा है। माहिरीन आसार कदीमा की ये मुत्तफ़िका राय है कि इस किस्म के खूबसूरत टाइलों की चुनाई और जुड़ाई का तमाम दुनिया में यही एक वाहिद नमूना है जिसका ईरान भी जवाब पेश करने से कासिर है। मशरक़ की सिमत इस मस्जिद का एक शानदार दरवाज़ा है। तकरीबन 170 बरस बाद इस मस्जिद की पहली बार मरम्मत हुई जिसके मुतालिक मीर माइल ठट्टवी अपने दीवान में रकम तराज है कि तालपुरी अहद 1227 हिजरी में मीर मुराद अली खान ने यह नेक खिदमत अंजाम दी। बादशाह बरतानिया में अव्वल सर बार्टल फ्रेयर के ज़माने में 1855 में और दोबारा मिस्टर जेम्स कमिश्नर के हुक्म से 1894 में मरम्मत की तजदीद की गई। कायम पाकिस्तान के बाद से 1961 तक PWD पाकिस्तान के जरिए इसकी वक्तन फक्तन मरम्मत होती रही और गालिबन अब भी नजर हुकूमत इस तरफ मुतवज्जे है। अबुल बका के भाई मीरक यूसुफ अपनी तारीख मजहर शाहजहानी में रकम तराज है कि ठट्टा शहर में उलामा फजला शोरा और खुशनवीसों के अलावा अक्सर बाशिंदे पेशावर और पाबंद शरा हैं। चुनाचे मस्जिद जामे शाहजहानी के अलावा ठट्टे की दीगर मसाजिद में औकात नमाज में 20,000 आदमी जमा हो जाते हैं। सच है जिन अल्लाह के घरों की बुनियाद तक्वे पर रखी गई हो वो हमेशा आबाद और पुर रौनक ही रहती है।
1: दिस इज FM 101।
2: आई हैव माय फेथ इन यू जस्ट लाइक आई हैव अ फेथ ऑन माय डैड हु वुड नेवर स्टैब मी इन द बैक। आई हैव अ फेथ ऑन माय सिस्टर टू इवन दो आई कैन नॉट रेजिस्ट इट ट्रू। I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I
3: own you. 101.

0: 6 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says the government has made every possible effort to provide relief to the public in the federal budget. The Deputy Prime Minister and the Egyptian Foreign Minister have telephonically discussed the recent understandings reached between the United States and Iran. Pakistan and the United Kingdom have reaffirmed the commitment to further strengthening bilateral relations, particularly in counter-terrorism. In the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the All Parties Hurriyat Conference has said military operations and arbitrary arrests have turned the territory into a prison. Leaders at the Group of Seven summit in France have demanded an immediate ceasefire in Lebanon. In the ICC Women's T20 World Cup, Pakistan will take on South Africa at Birmingham today.
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be back after the short commercial break.
3: Nikah khushiyon bhare ek khoobsurat safar ka aagaaz hai. इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है. निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है. लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं. नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है. यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
4: सुनते रहिए FM 101.
5: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद. अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ. एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ. एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन.
6: हमसे है रोशन ये जहां,
7: हमसे है

0: नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: शुक्रिया आपने

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101, आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: وصلى الله.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: सोने भैन भ्राओ ते मेरे काबले एहतराम बुजुर्गो तुहाडी भैन तुहाडी मेज़बान ते तुहाडी ईमेल और SMS दी तर्जमान साइमा तुहाडी खिदमत विच हाजिर है ते दिल दी गहराई नाल दुआ कर दी है कि रब सोना हर मरीज नू जल्द से जल्द मुकम्मल सेहत ते तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन प्यारे भैन भ्राओ हमेशा वांगू अज भी साडे नाल स्टूडियो विच प्रोफेसर सुलेमान साहब मौजूद होणगे पहले तुसी नोट फरमाओ साडा पता ते फोन नंबर फिर सुलेमान साहब नाल मुलाकात होवेगी ते लिखो फिर सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर फोन नंबर 042-377-27160 यानी 042-377-27160 मोबाइल नंबर है 03-300-414-2160 यानी 042-377-27160।

मियाँ कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, अरे कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में।

करिश्मे दिखाए जाते हैं, मियां कुछ सदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं, कुछ सदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं। ये नया गधा है तेरा, मदरसा नहीं वाइस, यहाँ शराब से इंसाफ।

कदे में जो गुजरती है अपनी सुबह शाम, रोज पीता हूँ तेरी मत भरी आंखों का जाम। मैं कदे में जो गुजरती है अपनी सुबह शाम, रोज पीता हूँ तेरी मत भरी आंखों का जाम। शेख जी आपकी जन्नत से मुझे गर्ज नहीं, जामो।

देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, बताओ काजमैन खुरासान सामरा, बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, बताओ काजमैन खुरासान सामरा, साकी मेरा सलाम अदब लेके

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: that.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: अक्टूबर में जुम्मे को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के हवाले से तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बरतानिया ने खास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया ने अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में उर्दन को एक के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।
1: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशा.

0: आइटम न मिल सकने पर उनकी कुछ तकरार वहां पहले से मौजूद अफराद से हुई। तकरार के दौरान उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसे सुनते ही एक बुजुर्ग गश खाकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया तो मालूम हुआ दिमाग की शरियान फट गई है। अस्पताल में 10 रोज दाखिल रहे लेकिन उन्हें होश तक ना आया और वो खालिक हकीकी से जा मिले। नेक और दीनदार आदमी थे, महल्ले में भी सरगर्म रहते थे, घर के करीब वाक़े इस मस्जिद के मामलात के लिए तो हरदम फिक्रमंद रहते थे। मस्जिद की तामीर में उन्होंने अपने वसाइल से भी खर्च किया और दूसरों से भी तआवुन का इंतजाम कराया था। यूं नमाजियों की बड़ी तादाद उनसे इज्जत और एहतराम से पेश आती थी। इस अचानक वाक़े के बारे में सभी को तजस्सुस था कि आखिर ऐसी क्या बात कही गई जिस पर इस कदर शदीद सदमा उन्होंने महसूस किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वजू के लिए गर्म पानी न मिल सकने पर जो साहब तकरार कर रहे थे उन्होंने गुस्से में आकर बुजुर्ग की अमानत और दयानत के बारे में कोई इल्जामी बात कह डाली थी। इस इल्जामी फकरे का इस कदर शदीद असर बुजुर्ग पर हो जाएगा इसका उन्हें खुद भी अंदाजा न था। अब उन्हें भी अफसोस और शर्मिंदगी थी लेकिन जाहिर है अब क्या हो सकता था। जानबूझकर किसी बेगुनाह को मुजरिम करार देना या किसी इंसान की तरफ कोई नाकर्दा बुराई मंसूब कर देना एक ऐसा झूठ है जिसे इस्लामी इस्तिलाह में बोहतान कहा जाता है। बोहतान से बचने की जिस सख्ती से ताकीद की गई है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के नजदीक बोहतान लगाने वाला फासिक करार दिया गया और उसकी गवाही हमेशा के लिए बेएतबार करार दी गई है। दूसरी जानिब गुस्से और इश्तियाल से भी मुसलमानों को बचने की ताकीद की गई है क्योंकि इश्तियाल की कैफियत में इंसान अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख सकता। बोहतान तराशी कई बार इस बिना पर ही होती है कि हैजानी कैफियत में इंसान जबान की हिफाजत करने के काबिल नहीं रह जाता और ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन बुजुर्ग की तरह हसास और जूरंज तो दुनिया से ही रुखसत हो जाता है वरना जवाबी इल्जाम और बोहतान का सिलसिला इस तरह शुरू होता है कि मामूली मामूली बातें बड़े बड़े तनाज़ात में तब्दील हो जाती हैं और ये तनाज़ात अफराद के दरमियान महदूद रहने की बजाय खानदानों कबीलों और ग्रोहों को एक दूसरे के दुश्मन बना देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अगर किसी आदमी में कोई बुराई मौजूद नहीं और कोई फर्द इस बुराई की निस्बत उस आदमी की जानिब करे तो ये बोहतान है। मतलब यही है कि ऐसे किसी भी अमल से बचना चाहिए।
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशरियात.

मुझे गोद में ले लो बाबा, अब मैं प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे।

गोद में ले लो बाबा। सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मुझे, गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे।

0: और अगर उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया तो कह देंगे अल्लाह ने, तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं।
1: अल्ला।

क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन।

लोगों अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और ना बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और ना फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे।